0: प्रेसिडेंट ने फोन किया कि इधर है डायरेक्टर
1: Ahora os 7 nudos, 15 3, autorizado a entregar, tránsito final.